0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओ, अफगानिस्तान में तालिबान शासन के 5 वर्ष पूरे होने पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों समेत आम लोगों पर पाबंदियां लगातार बढ़ रही हैं। अफगान लड़कियों की एक पूरी पीढ़ी शिक्षा से वंचित हो रही है। मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा कि लैंगिक आधार पर लोगों को जानबूझकर उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित करना मानवता के विरुद्ध उत्पीड़न के अपराध के दायरे में आता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है। पाबंदियों का असर महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच पर भी पड़ा है। विशेषज्ञों ने कहा, महिलाओं को उनके पहनावे या साथ में पुरुष अभिभावक न होने के कारण अस्पतालों से लौटा दिया गया, जिससे वे स्वास्थ्य सेवाओं के अपने अधिकार से वंचित हुई। देश की 1/3 से अधिक आबादी गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है। वहीं लगभग 40 लाख बच्चे गंभीर कुपोषण से जूझ रहे हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: अफगानिस्तान में तालिबान शासन के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, मगर महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर पाबंदियां लगातार बढ़ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के अनुसार तालिबान प्रशासन ने शिक्षा, कामकाज और आवाजाही की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने वाले 100 से भी अधिक फरमान जारी किए हैं। यूएन विमेन ने इसे दुनिया में महिला अधिकारों का सबसे गंभीर संकट बताया है। एजेंसी के अनुसार इन पाबंदियों ने भेदभाव को व्यवस्था का हिस्सा बना दिया है और महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से लगभग बाहर कर दिया है। यूनेस्को ने कहा है कि अफगानिस्तान दुनिया का एकमात्र देश है जहां प्राथमिक स्तर के बाद लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा पर औपचारिक प्रतिबंध है। अनुमान है कि 24 लाख लड़कियां भी माध्यमिक शिक्षा से वंचित हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा है कि ये दमन अब संस्थागत लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक रंगभेद का रूप ले चुका है। उन्होंने देशों से लैंगिक रंगभेद को मानवता के विरुद्ध एक अलग अपराध के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून में शामिल करने के प्रयासों का समर्थन करने की अपील की है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर स्पष्ट और मापने योग्य प्रगति के बिना तालिबान प्रशासन से संबंध सामान्य नहीं किए जाने चाहिए। इस बीच सहायता धनराशि में भारी कटौती से स्वास्थ्य, भोजन और जीवन रक्षक सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है। WFP के अनुसार अफगानिस्तान में 1,40,00,000 लोग भूख के संकट का सामना कर रहे हैं।
2: फरवरी 2022 को यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से संयुक्त राष्ट्र ने कम से कम 16,874 आम नागरिकों के मारे जाने और 51,173 के घायल होने की पुष्टि की है। मृतकों में 820 और घायलों में 3,126 बच्चे शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार निगरानी मिशन के अनुसार यूक्रेन में इस वर्ष के जुलाई के दौरान हताहत आम नागरिकों की संख्या मार्च 2022 के बाद से सबसे अधिक रही। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: यूक्रेन में जुलाई महीने में आम नागरिकों के हताहत होने की संख्या मार्च 2022 के बाद सबसे अधिक रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी मिशन का कहना है कि इस वर्ष नागरिकों को पहुंची हानि लगातार बढ़ रही है और जुलाई में ये नए उच्च स्तर पर पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की सहायक प्रवक्ता डैनिला ग्रॉस डी एल्मेडा ने जानकारी देते हुए बताया,
4: The UN Human Rights Monitoring Mission today said that more civilians were killed or injured in the country.
3: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी मिशन ने कहा है कि जुलाई 2026 में यूक्रेन में मार्च 2022 के बाद सबसे अधिक आम नागरिक मारे या घायल हुए। मिशन ने पुष्टि की है कि जुलाई में कम से कम 437 आम नागरिक मारे गए और 2610 घायल हुए। ये पिछले महीने की तुलना में 30% और जुलाई 2025 की तुलना में 70% अधिक है। हालांकि वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है क्योंकि निगरानी मिशन अब भी जानकारी की पुष्टि कर रहा है।
4: The actual figure is likely higher as the monitoring mission continues to verify information.
3: संयुक्त राष्ट्र महासचिव की सहायक प्रवक्ता डैनियला ग्रॉस डी एल्मेडा के शब्द। यूएन निगरानीकर्ताओं के अनुसार लंबी दूरी की मिसाइलें, ड्रोन, ग्लाइड बम और अग्रिम मोर्चे के पास कम दूरी के ड्रोन हमले नागरिकों के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। जुलाई में राजधानी कीव भीषण हमलों से सबसे अधिक प्रभावित शहरों में रही।
2: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के अस्थिर पूर्वी हिस्सों में इबोला संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि मरीजों का समय रहते पता लगाकर उन्हें अलग रखना मुश्किल हो जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला का मौजूदा प्रकोप अब देश के इतिहास का सबसे घातक प्रकोप बन गया है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इस बीमारी से अब तक 2,325 लोगों की मौत हो चुकी है। यह संख्या DRC में 2018 से 2020 के इबोला प्रकोप में हुई 2,299 मौतों के आंकड़े को पार कर गई है। उस प्रकोप को अब तक देश का सबसे घातक इबोला प्रकोप माना जाता था। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला प्रकोप पर काबू पाने की कोशिशें तेज हुई हैं, लेकिन संक्रमण अब भी बहुत तेजी से फैल रहा है। WHO के अनुसार संक्रमित लोगों के संपर्क में आए अधिक लोगों की पहचान हो रही है, लेकिन कई संक्रमण श्रृंखलाएं अब भी पकड़ में नहीं आ रही हैं। कई मरीज उपचार के बिना ही बीमारी के गंभीर चरण तक पहुंच रहे हैं। प्रकोप मुख्य रूप से इतुरी प्रांत में केंद्रित है, लेकिन नॉर्थ कीवू और हॉट उले में भी मामले सामने आ रहे हैं। प्रभावित 5 प्रांतों के 53 स्वास्थ्य क्षेत्रों में संक्रमण फैल चुका है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम गेब्रेसस ने चेतावनी देते हुए कहा,
5: इट्स ऑलरेडी द सेकंड बिगेस्ट इबोला एपिडेमिक ऑन रिकॉर्ड।
3: डॉक्टर टेड्रोस कह रहे हैं कि अब तक दर्ज दूसरा सबसे बड़ा इबोला प्रकोप है और यह पिछले सभी इबोला प्रकोपों से अधिक तेजी से फैल रहा है। WHO ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क निगरानी में सुधार हुआ है, मगर सभी इलाकों में स्थिति समान नहीं है। असुरक्षा, समुदायों में अविश्वास और उपचार केंद्रों पर बढ़ता दबाव राहत प्रयासों को मुश्किल बना रहे हैं। संगठन ने मामलों की तेज पहचान, समय पर उपचार, मरीजों को अलग रखने और सुरक्षित अंतिम संस्कार सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।
2: कोलंबिया के पश्चिमी हिस्से में सोमवार 10 अगस्त को स्थानीय समय अनुसार 7:34 पर आए शक्तिशाली भूकंप के बाद तलाश और बचाव अभियान जारी है। संयुक्त राष्ट्र की टीमें भी राष्ट्रीय प्रशासन व आपदा प्रबंधन एजेंसी के साथ समन्वय में राहत कार्यों में जुट गई हैं। अब तक UN एजेंसियों के बताए गए नए सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 426 लोग लापता हैं और 4,500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: कोलंबिया के पश्चिमी हिस्से में आए 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद तलाश और बचाव अभियान जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत कार्यों में जुट गया है। प्रभावित क्षेत्रों में आपात सामग्री, अतिरिक्त कर्मचारी और अन्य संसाधन भेजे जा रहे हैं। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार लगभग 5,000 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें 387 पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। 24 स्वास्थ्य केंद्र और 550 से अधिक शैक्षणिक संस्थान भी प्रभावित हुए हैं। शुरुआती प्राथमिकताओं में अस्थायी आश्रय, स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्य सुरक्षा और संरक्षण शामिल हैं।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय कैथोलिक विधायक नेटवर्क के 17वें वार्षिक सम्मेलन के प्रतिभागियों का अभिवादन कर संत पापा लियो 14वें ने कहा कि मानव प्रतिष्ठा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे युग के महान प्रश्न हैं, जिन्हें परिभाषित किया जाना और समझा जाना नितांत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय कैथोलिक विधायक नेटवर्क के संरक्षक कार्डिनल क्रिस्टोफ शॉनबॉर्न, कार्डिनल बेहरा बुत्रोस राय तथा कार्डिनल चार्ल्स माउंग बो के नेतृत्व में संत पापा लियो 14वें से साक्षात्कार हेतु रोम आए विधायकों का संत पापा ने भावपूर्ण स्वागत किया और कहा कि हालांकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवीन अवसर प्रदान करती है, तथापि इस युग के लिए यह एक महान चुनौती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रौद्योगिक प्रगति एक नैतिक प्रश्न से मानवता का सामना करवाती है, और वह सिर्फ यह नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि यह कि हमें क्या करना चाहिए। वास्तव में आज मानव परिवार एक निर्णायक चुनाव का सामना कर रहा है। अपने विश्व पत्र मैग्निफिका उमानिटास का उल्लेख कर संत पापा ने कहा कि इस पत्र में मैंने लिखा है कि हम एक नई बाबुल की मीनार बनाने के प्रलोभन में पड़ सकते हैं, जहां शक्ति, प्रभावकारिता और नियंत्रण मनुष्य के चेहरे को छिपा दें, या फिर हम एक ऐसी सभ्यता का निर्माण कर सकते हैं जिसमें प्रौद्योगिकी प्रत्येक मानव के अखंड विकास में मदद प्रदान कर सके। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिक प्रगति और तकनीकी विकास का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति की अलंघनीय गरिमा, सामान्य भलाई, वस्तुओं की सार्वभौमिक नियति, सहायकता और एकजुटता के लिए काम करते हुए विवेक हेतु सुनिश्चित मानदंड प्रदान करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जन कल्याण के लिए जिम्मेदार विधायकों का कार्य तकनीकी के प्रशासन हेतु उपयुक्त नीतियां तैयार करना तथा नवीनता में रुकावटें उत्पन्न करने के बजाय इसे समझदारी से मार्गदर्शन प्रदान करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ विधान को वैज्ञानिक और तकनीकी रचनात्मकता को प्रोत्साहन देना चाहिए और साथ ही मूलभूत मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। संत पापा लियो 14वें ने शुक्रवार 21 अगस्त को एक ट्वीट संदेश प्रकाशित कर स्मरण दिलाया है कि शांति के ईश्वर हमें घावों को शुद्ध करने, मेल मिलाप करने और प्रेम की सभ्यता के निर्माण की शक्ति प्रदान करते हैं। संत पापा लियो लिखते हैं, युद्ध के जख्म और धरती के क्षरण का मानव हृदय की स्थिति से गहरा संबंध है। मानवता को प्रताड़ित करने वाले संघर्ष कई तरह से अंदरूनी मतभेद और विभाजन का बाहरी रूप हैं। जब हृदय तहस नहस हो जाता तो रिश्तों पर असर पड़ता है और उनका प्रतिबिंब उन संरचनाओं में दिखने लगता है जिनका हम निर्माण करते हैं। वे लिखते हैं, तलवारों को पीटकर हल्के फाल बनाने की ईसाया के ग्रंथ के दूसरे अध्याय के चौथे पद की भविष्यवाणी केवल देशों के लिए एक नजरिया नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए एक निमंत्रण है। यह हमें हानि या क्षति को जीवन में रूपांतरित करने के लिए आमंत्रित करती है। संत पापा आगे लिखते हैं, युद्ध के शस्त्रों की जगह शांति के ईश्वर हमें घावों को शुद्ध करने, मेल मिलाप करने और प्रेम की सभ्यता के निर्माण की शक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह हमें आमंत्रित किया जाता है कि हम हमें सौंपे गए इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करें। सृष्टि की पारिस्थितिकी, मानवीय रिश्तों की पारिस्थितिकी और मानव हृदय की पारिस्थितिकी। इटली के तारांतो शहर में 21 अगस्त से 3 सितंबर तक जारी भूमध्य सागरीय खेलों के प्रतिभागियों को एक तार संदेश प्रेषित कर संत पापा लियो 14वें ने कहा कि खेलों का मकसद भाईचारा, स्वागत सत्कार, एकात्मता और शांति होना चाहिए। गुरुवार को तारांतो के कैथोलिक महागिरजाघर में भूमध्य सागरीय खेलों के उद्घाटन के उपलक्ष्य में तारांतो के महाधर्माध्यक्ष चीरो मिनियरो ने ख्रीस्त्याग प्रवचन में कहा कि खिलाड़ी साहसी होता है और वह गलतियां करने से नहीं डरता। भूमध्य सागरीय खेलों में यूरोप के 26 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ख्रीस्त्याग समारोह के अवसर पर ही वैटिकन राज सचिव कार्डिनल पियत्रो पारोलिन द्वारा प्रेषित संत पापा लियो 14वें का तार संदेश पढ़ा गया, जिसमें संत पापा ने कहा है कि खेलों को भाईचारे, प्रेम और शांति का माध्यम होना चाहिए। संत पापा ने लिखा, खेल के ये दिन संस्कृतियों और लोगों के बीच सेतुओं का निर्माण करने तथा मेहमान नवाजी, एकता और शांति को बढ़ावा देने का सुनहरा मौका है।
उन्होंने कहा, वस्तुतः खेल के जरिए ही उम्मीद की एक नई हवा प्रवाहित हो सकती है जो हथियारों का इस्तेमाल तो तुरंत नहीं रोकेगी, तथापि अधिक भ्रातृत्व वाली इंसानियत बनाने की संभावना का सुझाव दे सकेगी। इटली के रिमिनी शहर में कम्युनियन एंड लिबरेशन शीर्षक से प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नेतृत्व करने इस वर्ष संत पापा लियो 14वें भी शनिवार को रिमिनी शहर का दौरा कर रहे हैं, जहां उनके दर्शन को 2,00,000 श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। कम्युनियन एंड लिबरेशन के 47वें सम्मेलन के सह आयोजक रिमिनी के कैथलिक महाधर्माध्यक्ष निकोलो अनसेल्मी ने कहा कि निश्चित रूप से संत पापा की उपस्थिति युवाओं में और दूर दूर से उनके दर्शन हेतु पहुंचे उत्सुक लोगों में अपनी छाप छोड़ेगी। धर्माध्यक्ष अनसेल्मी के अनुसार शनिवार 22 अगस्त को समुद्र तट पर संत पापा लियो के नेतृत्व में आयोजित ख्रिस्तियाग समारोह में लगभग 2,00,000 श्रद्धालु उपस्थित होंगे, जबकि रिमिनी के कैथलिक महागिरजाघर में 650 श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। धर्माध्यक्ष ने कहा कि युखरिस्त इस संपूर्ण दिवस का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा। संत पापा लियो 14वें से पूर्व सन 1982 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने रिमिनी की प्रेरित यात्रा की थी। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओ, अफगानिस्तान में तालिबान शासन के 5 वर्ष पूरे होने पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों समेत आम लोगों पर पाबंदियां लगातार बढ़ रही हैं। अफगान लड़कियों की एक पूरी पीढ़ी शिक्षा से वंचित हो रही है। मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा कि लैंगिक आधार पर लोगों को जानबूझकर उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित करना मानवता के विरुद्ध उत्पीड़न के अपराध के दायरे में आता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है। पाबंदियों का असर महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच पर भी पड़ा है। विशेषज्ञों ने कहा, महिलाओं को उनके पहनावे या साथ में पुरुष अभिभावक न होने के कारण अस्पतालों से लौटा दिया गया, जिससे वे स्वास्थ्य सेवाओं के अपने अधिकार से वंचित हुई। देश की 1/3 से अधिक आबादी गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है। वहीं लगभग 40 लाख बच्चे गंभीर कुपोषण से जूझ रहे हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: अफगानिस्तान में तालिबान शासन के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, मगर महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर पाबंदियां लगातार बढ़ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के अनुसार तालिबान प्रशासन ने शिक्षा, कामकाज और आवाजाही की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने वाले 100 से भी अधिक फरमान जारी किए हैं। यूएन विमेन ने इसे दुनिया में महिला अधिकारों का सबसे गंभीर संकट बताया है। एजेंसी के अनुसार इन पाबंदियों ने भेदभाव को व्यवस्था का हिस्सा बना दिया है और महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से लगभग बाहर कर दिया है। यूनेस्को ने कहा है कि अफगानिस्तान दुनिया का एकमात्र देश है जहां प्राथमिक स्तर के बाद लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा पर औपचारिक प्रतिबंध है। अनुमान है कि 24 लाख लड़कियां भी माध्यमिक शिक्षा से वंचित हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा है कि ये दमन अब संस्थागत लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक रंगभेद का रूप ले चुका है। उन्होंने देशों से लैंगिक रंगभेद को मानवता के विरुद्ध एक अलग अपराध के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून में शामिल करने के प्रयासों का समर्थन करने की अपील की है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर स्पष्ट और मापने योग्य प्रगति के बिना तालिबान प्रशासन से संबंध सामान्य नहीं किए जाने चाहिए। इस बीच सहायता धनराशि में भारी कटौती से स्वास्थ्य, भोजन और जीवन रक्षक सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है। WFP के अनुसार अफगानिस्तान में 1,40,00,000 लोग भूख के संकट का सामना कर रहे हैं।
2: फरवरी 2022 को यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से संयुक्त राष्ट्र ने कम से कम 16,874 आम नागरिकों के मारे जाने और 51,173 के घायल होने की पुष्टि की है। मृतकों में 820 और घायलों में 3,126 बच्चे शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार निगरानी मिशन के अनुसार यूक्रेन में इस वर्ष के जुलाई के दौरान हताहत आम नागरिकों की संख्या मार्च 2022 के बाद से सबसे अधिक रही। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: यूक्रेन में जुलाई महीने में आम नागरिकों के हताहत होने की संख्या मार्च 2022 के बाद सबसे अधिक रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी मिशन का कहना है कि इस वर्ष नागरिकों को पहुंची हानि लगातार बढ़ रही है और जुलाई में ये नए उच्च स्तर पर पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की सहायक प्रवक्ता डैनिला ग्रॉस डी एल्मेडा ने जानकारी देते हुए बताया,
4: The UN Human Rights Monitoring Mission today said that more civilians were killed or injured in the country.
3: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी मिशन ने कहा है कि जुलाई 2026 में यूक्रेन में मार्च 2022 के बाद सबसे अधिक आम नागरिक मारे या घायल हुए। मिशन ने पुष्टि की है कि जुलाई में कम से कम 437 आम नागरिक मारे गए और 2610 घायल हुए। ये पिछले महीने की तुलना में 30% और जुलाई 2025 की तुलना में 70% अधिक है। हालांकि वास्तविक

0: की अस्थिर पूर्वी हिस्सों में इबोला संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि मरीजों का समय रहते पता लगाकर उन्हें अलग रखना मुश्किल हो जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला का मौजूदा प्रकोप अब देश के इतिहास का सबसे घातक प्रकोप बन गया है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इस बीमारी से अब तक 2,325 लोगों की मौत हो चुकी है। यह संख्या DRC में 2018 से 2020 के इबोला प्रकोप में हुई 2,299 मौतों के आंकड़े को पार कर गई है। उस प्रकोप को अब तक देश का सबसे घातक इबोला प्रकोप माना जाता था। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
1: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला प्रकोप पर काबू पाने की कोशिशें तेज हुई हैं, लेकिन संक्रमण अब भी बहुत तेजी से फैल रहा है। WHO के अनुसार संक्रमित लोगों के संपर्क में आए अधिक लोगों की पहचान हो रही है, लेकिन कई संक्रमण श्रृंखलाएं अब भी पकड़ में नहीं आ रही हैं। कई मरीज उपचार के बिना ही बीमारी के गंभीर चरण तक पहुंच रहे हैं। प्रकोप मुख्य रूप से इतुरी प्रांत में केंद्रित है, लेकिन नॉर्थ कीवू और हॉथ उले में भी मामले सामने आ रहे हैं। प्रभावित 5 प्रांतों के 53 स्वास्थ्य क्षेत्रों में संक्रमण फैल चुका है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम गेब्रेसस ने चेतावनी देते हुए कहा,
2: इट्स ऑलरेडी द सेकंड बिगेस्ट इबोला एपिडेमिक ऑन रिकॉर्ड।
1: डॉक्टर टेड्रोस कह रहे हैं कि अब तक दर्ज दूसरा सबसे बड़ा इबोला प्रकोप है और यह पिछले सभी इबोला प्रकोपों से अधिक तेजी से फैल रहा है। WHO ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क निगरानी में सुधार हुआ है, मगर सभी इलाकों में स्थिति समान नहीं है। असुरक्षा, समुदायों में अविश्वास और उपचार केंद्रों पर बढ़ता दबाव राहत प्रयासों को मुश्किल बना रहे हैं। संगठन ने मामलों की तेज पहचान, समय पर उपचार, मरीजों को अलग रखने और सुरक्षित अंतिम संस्कार सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।
0: कोलंबिया के पश्चिमी हिस्से में सोमवार 10 अगस्त को स्थानीय समय अनुसार 7:34 पर आए शक्तिशाली भूकंप के बाद तलाश और बचाव अभियान जारी है। संयुक्त राष्ट्र की टीमें भी राष्ट्रीय प्रशासन व आपदा प्रबंधन एजेंसी के साथ समन्वय में राहत कार्यों में जुट गई हैं। अब तक UN एजेंसियों के बताए गए नए सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 426 लोग लापता हैं और 4,500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
1: कोलंबिया के पश्चिमी हिस्से में आए 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद तलाश और बचाव अभियान जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत कार्यों में जुट गया है। प्रभावित क्षेत्रों में आपात सामग्री, अतिरिक्त कर्मचारी और अन्य संसाधन भेजे जा रहे हैं। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार लगभग 5,000 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें 387 पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। 24 स्वास्थ्य केंद्र और 550 से अधिक शैक्षणिक संस्थान भी प्रभावित हुए हैं। शुरुआती प्राथमिकताओं में अस्थायी आश्रय, स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्य सुरक्षा और संरक्षण शामिल हैं।
0: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय कैथोलिक विधायक नेटवर्क के 17वें वार्षिक सम्मेलन के प्रतिभागियों का अभिवादन कर संत पापा लियो 14वें ने कहा कि मानव प्रतिष्ठा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे युग के महान प्रश्न हैं, जिन्हें परिभाषित किया जाना और समझा जाना नितांत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय कैथोलिक विधायक नेटवर्क के संरक्षक कार्डिनल क्रिस्टोफ शॉनबॉर्न, कार्डिनल बेहरा बुत्रोस राय तथा कार्डिनल चार्ल्स माउंग बो के नेतृत्व में संत पापा लियो 14वें से साक्षात्कार हेतु रोम आए विधायकों का संत पापा ने भावपूर्ण स्वागत किया और कहा कि हालांकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवीन अवसर प्रदान करती है, तथापि इस युग के लिए यह एक महान चुनौती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रौद्योगिक प्रगति एक नैतिक प्रश्न से मानवता का सामना करवाती है, और वह सिर्फ यह नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि यह कि हमें क्या करना चाहिए। वास्तव में आज मानव परिवार एक निर्णायक चुनाव का सामना कर रहा है। अपने विश्व पत्र मैग्निफिका उमानिटास का उल्लेख कर संत पापा ने कहा कि इस पत्र में मैंने लिखा है कि हम एक नई बाबुल की मीनार बनाने के प्रलोभन में पड़ सकते हैं, जहां शक्ति, प्रभावकारिता और नियंत्रण मनुष्य के चेहरे को छिपा दें, या फिर हम एक ऐसी सभ्यता का निर्माण कर सकते हैं जिसमें प्रौद्योगिकी प्रत्येक मानव के अखंड विकास में मदद प्रदान कर सके। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिक प्रगति और तकनीकी विकास का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति की अलंघनीय गरिमा, सामान्य भलाई, वस्तुओं की सार्वभौमिक नियति, सहायकता और एकजुटता के लिए काम करते हुए विवेक हेतु सुनिश्चित मानदंड प्रदान करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जन कल्याण के लिए जिम्मेदार विधायकों का कार्य तकनीकी के प्रशासन हेतु उपयुक्त नीतियां तैयार करना तथा नवीनता में रुकावटें उत्पन्न करने के बजाय इसे समझदारी से मार्गदर्शन प्रदान करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ विधान को वैज्ञानिक और तकनीकी रचनात्मकता को प्रोत्साहन देना चाहिए और साथ ही मूलभूत मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। संत पापा लियो 14वें ने शुक्रवार 21 अगस्त को एक ट्वीट संदेश प्रकाशित कर स्मरण दिलाया है कि शांति के ईश्वर हमें घावों को शुद्ध करने, मेल मिलाप करने और प्रेम की सभ्यता के निर्माण की शक्ति प्रदान करते हैं। संत पापा लियो लिखते हैं, युद्ध के जख्म और धरती के क्षरण का मानव हृदय की स्थिति से गहरा संबंध है। मानवता को प्रताड़ित करने वाले संघर्ष कई तरह से अंदरूनी मतभेद और विभाजन का बाहरी रूप हैं। जब हृदय तहस नहस हो जाता तो रिश्तों पर असर पड़ता है और उनका प्रतिबिंब उन संरचनाओं में दिखने लगता है जिनका हम निर्माण करते हैं। वे लिखते हैं, तलवारों को पीटकर हल के फाल बनाने की ईसाया के ग्रंथ के दूसरे अध्याय के चौथे पद की भविष्यवाणी केवल देशों के लिए एक नजरिया नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए एक निमंत्रण है। यह हमें हानि या क्षति को जीवन में रूपांतरित करने के लिए आमंत्रित करती है। संत पापा आगे लिखते हैं, युद्ध के शस्त्रों की जगह शांति के ईश्वर हमें घावों को शुद्ध करने, मेल मिलाप करने और प्रेम की सभ्यता के निर्माण की शक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह हमें आमंत्रित किया जाता है कि हमें सौंपे गए इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करें। सृष्टि की पारिस्थितिकी, मानवीय रिश्तों की पारिस्थितिकी और मानव हृदय की पारिस्थितिकी। इटली के तारांतो शहर में 21 अगस्त से 3 सितंबर तक जारी भूमध्य सागरीय खेलों के प्रतिभागियों को एक तार संदेश प्रेषित कर संत पापा लियो 14वें ने कहा कि खेलों का मकसद भाईचारा, स्वागत सत्कार, एकात्मता और शांति होना चाहिए। गुरुवार को तारांतो के कैथोलिक महागिरजाघर में भूमध्य सागरीय खेलों के उद्घाटन के उपलक्ष्य में तारांतो के महाधर्माध्यक्ष चीरो मिनियरो ने ख्रीस्त्याग प्रवचन में कहा कि खिलाड़ी साहसी होता है और वह गलतियां करने से नहीं डरता। भूमध्य सागरीय खेलों में यूरोप के 26 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ख्रीस्त्याग समारोह के अवसर पर ही वैटिकन राज सचिव कार्डिनल पियत्रो पारोलिन द्वारा प्रेषित संत पापा लियो 14वें का तार संदेश पढ़ा गया, जिसमें संत पापा ने कहा है कि खेलों को भाईचारे, प्रेम और शांति का माध्यम होना चाहिए। संत पापा ने लिखा, खेल के ये दिन संस्कृतियों और लोगों के बीच सेतुओं का निर्माण करने तथा मेहमान नवाजी, एकता और शांति को बढ़ावा देने का सुनहरा मौका है।
उन्होंने कहा, वस्तुतः खेल के जरिए ही उम्मीद की एक नई हवा प्रवाहित हो सकती है जो हथियारों का इस्तेमाल तो तुरंत नहीं रोकेगी, तथापि अधिक भ्रातृत्व वाली इंसानियत बनाने की संभावना का सुझाव दे सकेगी। इटली के रिमिनी शहर में कम्युनियन एंड लिबरेशन शीर्षक से प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नेतृत्व करने इस वर्ष संत पापा लियो 14वें भी शनिवार को रिमिनी शहर का दौरा कर रहे हैं, जहां उनके दर्शन को 2,00,000 श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। कम्युनियन एंड लिबरेशन के 47वें सम्मेलन के सह आयोजक रिमिनी के कैथलिक महाधर्माध्यक्ष निकोलो अनसेल्मी ने कहा कि निश्चित रूप से संत पापा की उपस्थिति युवाओं में और दूर दूर से उनके दर्शन हेतु पहुंचे उत्सुक लोगों में अपनी छाप छोड़ेगी। धर्माध्यक्ष अनसेल्मी के अनुसार शनिवार 22 अगस्त को समुद्र तट पर संत पापा लियो के नेतृत्व में आयोजित ख्रिस्तियाक समारोह में लगभग 2,00,000 श्रद्धालु उपस्थित होंगे, जबकि रिमिनी के कैथलिक महागिरजाघर में 650 श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। धर्माध्यक्ष ने कहा कि युखरिस्त इस संपूर्ण दिवस का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा। संत पापा लियो 14वें से पूर्व सन 1982 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने रिमिनी की प्रेरितिक यात्रा की थी। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विंटे।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: पृथ्वी और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है,

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

0: और नित्य कुमारी
1: मरियम
0: मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा लियो 14वें की सान मारिनो गणराज्य और इटली के शहर रिमिनी की प्रेरित यात्रा का संक्षिप्त रिपोर्ट। संत पापा लियो 14वें आज शनिवार 22 अगस्त को स्थानीय समय अनुसार सुबह 8 बजे वाटिकन हेलीपैड से सान मारिनो गणराज्य के लिए रवाना हुए। करीब 28,000 की आबादी वाला यह देश यूरोप का सबसे पुराना गणराज्य माना जाता है। 61 वर्ग किलोमीटर का यह देश दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। संत पापा का हेलीकॉप्टर सुबह 9 बजे तोरासिया हवाई अड्डे पर उतरा। संत पापा कार से पियासा देला लिबर्ता पहुँचे। वहाँ संत पापा का स्वागत मिलिट्री सम्मान और राष्ट्रीय गान के साथ किया गया। संत पापा और कैप्टन रीजेंट एलिस मीना और व्लादिमीरो सेल्वा पब्लिक भवन में प्रवेश किए। वहां उन्होंने सान मारिनो के नागर अधिकारियों से मुलाकात की। 12वें परिषद कक्ष में संत पापा कैप्टन रीजेंट के साथ निजी बातचीत की और मेहमानों की पुस्तक पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद वे ग्रेट एंड जनरल काउंसिल के हॉल में प्रवेश किए। कैप्टन रीजेंट एलिस मीना और व्लादिमीरो सेल्वा ने संत पापा लियो 14वें का अभिवादन किया, जिसमें उन्होंने दुनिया के हालात, छोटे देश द्वारा यूक्रेनियों की मदद और शांति, मानव अधिकारों की सुरक्षा और बुनियादी आजादी जैसे विषयों पर एक राय का जिक्र किया। अपने अभिवादन में संत पापा लियो 14वें ने दुनिया के सबसे पुराने गणराज्य का दौरा करने की खुशी जताई।
3: Signori capitani reggenti, illustri autorità, sono molto lieto di visitare il vostro paese.
2: जहां 1982 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय और 2011 में संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने दौरा किया था। सबसे शांत गणराज्य के तौर पर जाना जाने वाला सान मारिनो अपने आदर्श लिबर्टास स्वतंत्रता पर टिका हुआ है, जिसके बारे में संत पापा ने कहा कि यह इसके इतिहास और भविष्य की उम्मीदों को बताता है। सबसे पहले मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बिना सच्ची नागरिक स्वतंत्रता नहीं हो सकती, यानी इंसान की गरिमा का सम्मान किए बिना और इसे बढ़ावा दिए बिना, जिसका एक जरूरी हिस्सा स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा कि यह स्वतंत्रता ईश्वर ने दी है और इसकी गारंटी दी है। स्वतंत्रता को बढ़ावा देने का मतलब है अंतःकरण की रक्षा करना, और उन कई पुरुषों और महिलाओं को याद किया जिन्होंने अपनी जान देकर शहीद हो गए। संत पापा ने संत थॉमस मूर, जो राजनेताओं और राजनीतिज्ञों के संरक्षक संत हैं, के साथ साथ उन कई लोगों की ओर इशारा किया जो अपने अंतःकरण और ईश्वर के बच्चे होने से मिलने वाली स्वतंत्रता के प्रति निष्ठावान रहते हैं। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता खुद को देने, मेलजोल, मुलाकात और बातचीत से पूरी होती है और त्रित्व परमेश्वर से आती है। यह धार्मिक बात शायद ज्यादा लग सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि आज यह जरूरी है, क्योंकि मूर्ति पूजा उन राजनीतिक और आर्थिक परियोजनाओं को जड़ से ही खराब कर देती है जो स्वतंत्रता के नाम पर पेश किए जाते हैं, लेकिन असल में मूर्तियों और ताकत के गुलाम होते हैं। संत पापा लियो 14वें ने स्वतंत्रता और मेलजोल के क्रिश्चियन नजरिए को बनाए रखा, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये साथ खड़े हो सकते हैं या साथ गिर सकते हैं। उन्होंने सान मारिनो के संस्थापक संत मारिनुस और संत लियो को याद किया, जिनकी मेहनत और समझदारी गणराज्य के लोगों में जिंदा है। उन्होंने कहा कि सन मरीनो और वाटिकन देशों के बीच समझ को बढ़ावा देने के लिए कूटनीतिक और बहुपक्षवाद की इच्छा रखते हैं। इसके बाद संत पापा लियो 14वें ने सन मरीनो गणराज्य को कैथोलिक सामाजिक शिक्षा के सिद्धांतों, खासकर सबकी भलाई की खोज, चीजों की विश्वव्यापी अभिप्राय और सामाजिक न्याय का इस्तेमाल करते हुए अच्छी राजनीति की प्रयोगशाला के तौर पर काम करने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही उन्होंने सन मरीनो से इंसान की देखभाल के मुख्य मकसद को आगे बढ़ाने की अपील की, जो गर्भधारण से लेकर सामान्य मौत तक हर इंसान की जान की सुरक्षा में प्रकट होता है। संत पापा ने खास तौर पर यूक्रेनी लोगों को दिए गए समर्थन और मेहमान नवाजी और ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को याद किया, जब यह बढ़ते खतरे में आ गया है। अंत में संत पापा लियो 14वें ने सन मरीनो के नागर नेताओं और नागरिकों को हर व्यक्ति की तरफ से उनकी हिम्मत वाली और दूरदर्शी कोशिशों के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद संत पापा नैप्टन्स रीजेंट्स के साथ पलाजो पब्लिको के सेंट्रल बालकनी में आए। वहां प्रांगण में मौजूद मरीनो वासियों का स्वागत करते हुए कहा, शुभ प्रभात। इस खूबसूरत दिन पर आपके स्वागत के लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सच में आपके साथ यहां आकर आपका अभिवादन करके सन मरीनो के इस महान लोगों की सुंदरता, इतिहास, परंपरा और विश्वास का आनंद लेकर बहुत खुश हूं। आपको शुभकामनाएं। इतना कहने के बाद संत पापा पलासो पब्लिको से निकलकर सन मरीनो के महागिरजा घर की ओर प्रस्थान किए।
4: पोप लियो 14वें ने सन मरीनो गणराज्य के एक दिवसीय प्रेरितिक दौरे के अवसर पर सन मरीनो के महागिरजाघर में वहां के कलीसियाई समुदाय से मुलाकात की। महागिरजाघर के प्रवेश द्वार पर सन मरीनो मोंतेफेल्त्रो के धर्माध्यक्ष डोमेनिको बेनेवेंटी और महागिरजाघर के रेक्टर मार्को मंजांती ने संत पापा लियो का स्वागत किया। महागिरजाघर के अंदर पुरोहित, धर्म संघी एवं धर्म प्रांत के कलीसियाई प्रतिनिधि उपस्थित थे। संत पापा ने महागिरजाघर में पौत्रतम संस्कार की आराधना की। और संत मरीनो के पौत्र अवशेष का सम्मान किया। तत्पश्चात धर्माध्यक्ष डोमेनिको ने संत पापा को संबोधित करते हुए कहा,
5: Beatissimo padre, con immensa gioia.
4: संत पिता, अत्यंत खुशी एवं बेटे जैसे स्नेह के साथ संत मरीनो मोंतेफेल्त्रो की कलीसिया इस महागिरजाघर में आपका स्वागत करती है, जो गणराज्य के संस्थापक और हमारे धर्म प्रांत के संरक्षक संत मरीनो के पौत्र अवशेष की पौत्र जगह है। आपकी उपस्थिति कृपा का एक उपहार है, जो हमें हिम्मत देता है और हमारे विश्वास को सुदृढ़ करता है। एक अनोखी भूमि को आशीर्वाद देता, जो एक ही स्थानीय कलीसिया में दो स्वतंत्र देशों सन मरीनो और इटली को समेटे हुए है। उन्होंने बतलाया कि इसके बावजूद वे भाईचारे, शांति और विविधता के बीच एकता के साथ जीते हैं। उन्होंने बतलाया कि उनका इतिहास आज़ादी के सिद्धांत पर आधारित है, जो विश्वास एवं सामुदायिक भावना में पूर्ण होती है। उस आज़ादी के द्वारा वे ईश्वर और इतिहास के सामने जिम्मेदार पुरुष एवं महिला के रूप में, जैसा कि विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास में सिखाया गया है, हर जीवन की गरिमा को गर्भधारण से लेकर उसके स्वाभाविक अंत तक सुरक्षित रखने के प्रयास में अपना सहयोग देते हैं। धर्माध्यक्ष ने संत पापा के सामने शांति के लिए, सभी युद्धों को खत्म करने के लिए अपनी जोरदार अपील दोहराई और संत पापा से आग्रह करते हुए कहा, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमें विश्वास में सुदृढ़ करें और हमारे कदमों को आशीर्वाद दें, ताकि यह भूमि शिष्यों के लिए घर एवं उम्मीद की जगह बनी रहे। धर्माध्यक्ष के स्वागत भाषण के बाद संत पापा ने महागिरजाघर में उपस्थित विश्वासी समुदाय को संबोधित कर कहा,
6: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
4: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ दिन। मुझे इस महागिरजाघर में आप सभी से मिलकर खुशी हो रही है, जो आपके संरक्षक संत डीकन मरीनो को समर्पित है। मैं धर्मदक्ष का अभिवादन करता हूँ और उनके सुवचनों के लिए धन्यवाद देता हूँ। साथ ही पुरोहितों, धर्म संघियों, धर्म प्रांत की कलीसिया प्रतिनिधियों और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन करता हूँ। संत पापा ने इस पल को ख्रिस्त के पदचिन्हों पर एक साथ यात्रा में एक पड़ाव के रूप में अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया। सन मरीनो की कलीसिया के इतिहास पर नजर डालते हुए संत पापा ने कहा, सन मरीनो मोंतेफेल्ट्रो धर्म प्रांत संत मरीनो और लियोन के विश्वास एवं साहस का एक शानदार इतिहास की विरासत है, जिन्होंने 18 सदियों पहले ख्रिस्त संदेश के साथ ऐसे मूल्यों को लाया जिससे एक ऐसी संस्कृति एवं सभ्यता का जन्म हुआ जो ईश्वर की छवि मानव पर केंद्रित हो। लोग धर्मी और राजमिस्त्री, जिन्हें बाद में अलग अलग सेवाओं के लिए बुलाया गया, सुसमाचार के संदेश को एक नए समुदाय और राजनीतिक मॉडल में बदलने में कामयाब रहे। संत पापा ने गौर किया कि यह मॉडल आज भी जीवित है। उन्होंने कहा, यह देखने में बहुत अच्छा लगता है कि धर्म प्रांत और नागरिक समुदाय अपने संस्थापकों के कामों को उसी जोश और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। संत पापा ने कलीसिया के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को संबोधित कर कहा, मैं सबसे पहले युवाओं की ओर मुड़ता हूँ। उनसे पोप बेनेडिक्ट 16वें की बात दोहराते हुए कहा, आधे अधूरे तुरंत जवाबों

आपको खोजते और आपकी प्रतीक्षा करते हैं और उनकी मदद से आपके सपनों में इतिहास को प्रभावित करने और उससे बेहतर बनाने की ताकत आएगी। संत पापा ने युवाओं को एक दूसरा सुझाव दिया। उन्होंने कहा, दुनिया में अपने मिशन को पूरे जोश के साथ अपनाएं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले अपने बुलावे को समझने की कोशिश करें, जो आप में से हर एक के लिए खास है, और उसकी महानता की तारीफ करें, और फिर ईश्वर से आपको जो भी वरदान मिले हैं बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ उसमें लगा दें। विवाह संस्कार, पुरोहिता या समर्पित जीवन अपनाने, सामाजिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता जैसे मुश्किल फैसले लेने से ना डरें। जो जिम्मेदारियां आपका इंतजार कर रही हैं उनके लिए खुद को जितना हो सके उतना अच्छे से तैयार करें। उदारता और न्याय की पहल एवं परियोजनाओं में शामिल हों। इस तरह आप भी दुनिया से बात करने वाली शांति की गवाही देने में योगदान देंगे, जो इस यात्रा के लिए पोप का आदर्श वाक्य है। संत पापा ने उन पुरोहितों, धर्म गुरुओं एवं शिक्षकों को भी धन्यवाद दिया जो अलग अलग कार्यक्रमों एवं कोशिशों के जरिए बच्चों के मानवीय एवं ख्रिस्ते विकास के लिए काम करते हैं। पोप ने कहा, प्यारे मित्रों, आपका काम एक छिपा हुआ लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम है, एक विनम्र एवं मूल्यवान सेवा है, क्योंकि इससे माता पिता को मदद मिलती है जो अपने बच्चों की धर्म शिक्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। वास्तव में परिवार विश्वास के प्रशिक्षण के लिए पहला स्थान है। वह कुदरती कोक है जहां बचपन से सुसमाचार को सीखा और हर दिन सांस लिया जाता है। इसलिए एक विवेकशील प्रचारक अपनी देखभाल के द्वारा यह सुनिश्चित करेगा कि परिवारों और कलीसियाई समुदायों के बीच एक मजबूत शैक्षणिक तालमेल बने, एक शैक्षणिक समझौता हो, ताकि माता पिता शामिल महसूस कर सकें, अपने धर्म को एक नए तरीके से पुनः खोज कर सकें और अपने बच्चों को विरासत में मिले ख्रिस्तीय मूल्यों को देने की खुशी पा सकें। माता पिता और शिक्षकों को सलाह देते हुए पोप ने कहा कि वे विकास के रास्ते पर खासकर ख्रिस्त दीक्षा में सबसे पहले बपतिस्मा और संस्कारी जीवन की सुंदरता एवं आनंद को बताएं, ताकि समुदायों में पवित्रता के रास्ते बन सकें और मजबूत हो सकें और सभी लोगों में अपने नबी, पुरोहित और राजा होने की गरिमा के बारे में जागरूकता बढ़ सके। संत पापा ने कहा, हमारा विश्वास है कि सुसमाचार हर समय के पुरुषों और महिलाओं के लिए स्वतंत्रता का रास्ता है और यीशु ख्रिस्त एवं उनके वचन में मानवता की खुशियों, जख्मों और गहरे सवालों को अर्थ एवं पक्के जवाब मिलते हैं। इसलिए हमें यकीन है कि प्रभु हमारे रास्ते पर जो भाई बहन लाते हैं उन्हें हम जो सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं वह है प्रभु से मिलने में उनकी मदद करना, जिन्होंने शरीर धारण किया, जो हमारे लिए मरे और फिर जी उठे और जिनमें हमारी मुक्ति निहित है। इस नज़रिए से हम हर तरह के उदार कार्य करते हैं बिना किसी हिचकिचाहट और गहरी चिंता के साथ, बल्कि हमेशा उन लोगों की बड़ी और पूरी भलाई को ध्यान में रखते हुए जिनका हम साथ देते हैं। संत पापा ने कहा, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कई युद्धों से घायल है, जहां हम बढ़ती हिंसा, अकेलापन और दूसरों के डर से परेशान हैं। इन परेशान करने वाले बहाव का सामना करते हुए हमारा जवाब सिर्फ सुसमाचार के रास्ते पर और भी अधिक पक्के विश्वास के साथ चलना हो सकता है। इसकी प्रेरणा एक ऐसे समाज की नींव है जो अपनी और दूसरों की आज़ादी के सम्मान पर एवं सबसे बढ़कर ईश्वर की पौत्र इच्छा के सम्मान पर बना हो, जो सबसे कमज़ोर लोगों के लिए चिंता, माफ़ी, मेलजोल और एकजुटता दिखाता एवं आज्ञा देता है। संत पापा ने तीसरी सलाह के रूप में एकता बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, आइए हम अपने समुदायों में एकता की गवाही दें, पल्लियों के बीच और उनके अंदर, पुरोहितों एवं विश्वासियों के बीच एवं अलग अलग करिश्मों और प्रेरिताय के बीच। यह भी उस जीवित सुसमाचार की विरासत का हिस्सा है जो संत मरीनो और लियोन ने हमें दी है। उनकी दुआओं से प्रभु आपको आशीर्वाद दें और आपकी यात्रा में हमेशा आपका साथ दें। संत पापा ने अंत में कहा, आपके स्वागत के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको अपनी प्रार्थनाओं में अपने साथ रखता हूँ और मुझे यकीन है कि आप भी पोप के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। धन्यवाद। अपना संदेश समाप्त कर संत पापा ने महागिरजाघर के अंदर और बाहर उपस्थित सभी विश्वासियों का अभिवादन किया और उनका हौसला बढ़ाते हुए उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इसके बाद संत पापा सन मरीनो से विदा हुए।
उन्होंने मेनाबिले में अगुस्तीन

सन मरीनो में आधा दिन बिताने के बाद संत पापा लियो 14वें हेलीकॉप्टर से करीब 2:45 बजे रिमिनी फिएरा हेलीपैड पर उतरे। वहां से संत अगुस्टीन प्रदर्शनी का दौरा किया। फिर वे पापा मोबाइल से लियोन हार्मेल प्रदर्शनी केंद्र गए। रास्ते में संत पापा के दर्शन हेतु एकत्रित छोटे बड़े सभी लोगों का अभिवादन करते हुए संत पापा आगे बढ़े। वहां से संत पापा बच्चों के गांव में मीटिंग में हिस्सा लेने वालों का अभिवादन किया। इसके बाद संत पापा पापा मोबाइल से ही ग्रैंड ऑडिटोरियम में कम्युनियन एंड लिबरेशन शीर्षक से प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। मीटिंग में करीब 3,000 स्वयंसेवक अपना योगदान दे रहे हैं। संत पापा ने मीटिंग के प्रतिभागियों को अपना संदेश दिया। इसके बाद संत पापा रिमिनी महागिरजा घर गए और महागिरजा घर में कारितास की मदद से बीमार, दिव्यांग और गरीबों से मुलाकात की। उन्हें अपना प्यार भरा संदेश दिया, उनके साथ समय बिताया। फिर शाम को पियाजाले देल पोर्तो में रिमिनी धर्म प्रांत के विश्वासियों के साथ पवित्र मिस्सा समारोह का अनुष्ठान करेंगे। पवित्र मिस्सा के बाद पियाजाले देल पोर्तो में स्थानीय अधिकारियों के विदाई समारोह के बाद संत पापा हेलीकॉप्टर से वाटिकन के लिए रवाना होंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा लियो 14वें की सान मारिनो गणराज्य और इटली के शहर रिमिनी की प्रेरित यात्रा का संक्षिप्त रिपोर्ट। संत पापा लियो 14वें आज शनिवार 22 अगस्त को स्थानीय समय अनुसार सुबह 8 बजे वाटिकन हेलीपैड से सान मारिनो गणराज्य के लिए रवाना हुए। करीब 28,000 की आबादी वाला यह देश यूरोप का सबसे पुराना गणराज्य माना जाता है। 61 वर्ग किलोमीटर का यह देश दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। संत पापा का हेलीकॉप्टर सुबह 9 बजे तोरासिया हवाई अड्डे पर उतरा। संत पापा कार से पियासा देला लिबर्ता पहुंचे। वहां संत पापा का स्वागत मिलिट्री सम्मान और राष्ट्रीय गान के साथ किया गया। संत पापा और कैप्टन रीजेंट एलिस मीना और व्लादिमीरो सेल्वा पब्लिक भवन में प्रवेश किए। वहां उन्होंने सान मारिनो के नागर अधिकारियों से मुलाकात की। 12वें परिषद कक्ष में संत पापा कैप्टन रीजेंट के साथ निजी बातचीत की और मेहमानों की पुस्तक पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद वे ग्रेट एंड जनरल काउंसिल के हॉल में प्रवेश किए। कैप्टन रीजेंट एलिस मीना और व्लादिमीरो सेल्वा ने संत पापा लियो 14वें का अभिवादन किया, जिसमें उन्होंने दुनिया के हालात, छोटे देश द्वारा यूक्रेनियों की मदद और शांति, मानव अधिकारों की सुरक्षा और बुनियादी आजादी जैसे विषयों पर एक राय का जिक्र किया। अपने अभिवादन में संत पापा लियो 14वें ने दुनिया के सबसे पुराने गणराज्य का दौरा करने की खुशी जताई।
3: Signori capitani reggenti, illustri autorità, sono molto lieto di visitare il vostro paese.
2: जहां 1982 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय और 2011 में संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने दौरा किया था। सबसे शांत गणराज्य के तौर पर जाना जाने वाला सान मारिनो अपने आदर्श लिबर्टास स्वतंत्रता पर टिका हुआ है, जिसके बारे में संत पापा ने कहा कि यह इसके इतिहास और भविष्य की उम्मीदों को बताता है। सबसे पहले मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बिना सच्ची नागरिक स्वतंत्रता नहीं हो सकती, यानी इंसान की गरिमा का सम्मान किए बिना और इसे बढ़ावा दिए बिना, जिसका एक जरूरी हिस्सा स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा कि यह स्वतंत्रता ईश्वर ने दी है और इसकी गारंटी दी है। स्वतंत्रता को बढ़ावा देने का मतलब है अंतःकरण की रक्षा करना, और उन कई पुरुषों और महिलाओं को याद किया जिन्होंने अपनी जान देकर शहीद हो गए। संत पापा ने संत थॉमस मूर, जो राजनेताओं और राजनीतिज्ञों के संरक्षक संत हैं, के साथ साथ उन कई लोगों की ओर इशारा किया जो अपने अंतःकरण और ईश्वर के बच्चे होने से मिलने वाली स्वतंत्रता के प्रति निष्ठावान रहते हैं। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता खुद को देने, मेलजोल, मुलाकात और बातचीत से पूरी होती है और त्रित्व परमेश्वर से आती है। यह धार्मिक बात शायद ज्यादा लग सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि आज यह जरूरी है, क्योंकि मूर्ति पूजा उन राजनीतिक और आर्थिक परियोजनाओं को जड़ से ही खराब कर देती है जो स्वतंत्रता के नाम पर पेश किए जाते हैं, लेकिन असल में मूर्तियों और ताकत के गुलाम होते हैं। संत पापा लियो 14वें ने स्वतंत्रता और मेलजोल के क्रिस्तिया नजरिए को बनाए रखा, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये साथ खड़े हो सकते हैं या साथ गिर सकते हैं। उन्होंने सान मारिनो के संस्थापक संत मारिनुस और संत लियो को याद किया, जिनकी मेहनत और समझदारी गणराज्य के लोगों में जिंदा है। उन्होंने कहा कि सन मरीनो और वाटिकन देशों के बीच समझ को बढ़ावा देने के लिए कूटनीतिक और बहुपक्षवाद की इच्छा रखते हैं। इसके बाद संत पापा लियो 14वें ने सन मरीनो गणराज्य को कैथोलिक सामाजिक शिक्षा के सिद्धांतों, खासकर सबकी भलाई की खोज, चीजों की विश्वव्यापी अभिप्राय और सामाजिक न्याय का इस्तेमाल करते हुए अच्छी राजनीति की प्रयोगशाला के तौर पर काम करने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही उन्होंने सन मरीनो से इंसान की देखभाल के मुख्य मकसद को आगे बढ़ाने की अपील की, जो गर्भधारण से लेकर सामान्य मौत तक हर इंसान की जान की सुरक्षा में प्रकट होता है। संत पापा ने खास तौर पर यूक्रेनी लोगों को दिए गए समर्थन और मेहमान नवाजी और ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को याद किया, जब यह बढ़ते खतरे में आ गया है। अंत में संत पापा लियो 14वें ने सन मरीनो के नागर नेताओं और नागरिकों को हर व्यक्ति की तरफ से उनकी हिम्मत वाली और दूरदर्शी कोशिशों के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद संत पापा नैप्टन्स रीजेंट्स के साथ पलाजो पब्लिको के सेंट्रल बालकनी में आए। वहां प्रांगण में मौजूद मरीनो वासियों का स्वागत करते हुए कहा, शुभ प्रभात। इस खूबसूरत दिन पर आपके स्वागत के लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सच में आपके साथ यहां आकर आपका अभिवादन करके सन मरीनो के इस महान लोगों की सुंदरता, इतिहास, परंपरा और विश्वास का आनंद लेकर बहुत खुश हूं। आपको शुभकामनाएं। इतना कहने के बाद संत पापा पलासो पब्लिको से निकलकर सन मरीनो के महागिरजा घर की ओर प्रस्थान किए।
4: पोप लियो 14वें ने सन मरीनो गणराज्य के एक दिवसीय प्रेरितिक दौरे के अवसर पर सन मरीनो के महागिरजाघर में वहां के कलीसियाई समुदाय से मुलाकात की। महागिरजाघर के प्रवेश द्वार पर सन मरीनो मोंतेफेल्त्रो के धर्माध्यक्ष डोमेनिको बेनेवेंटी और महागिरजाघर के रेक्टर मार्को मंजांती ने संत पापा लियो का स्वागत किया। महागिरजाघर के अंदर पुरोहित, धर्म संघी एवं धर्म प्रांत के कलीसियाई प्रतिनिधि उपस्थित थे। संत पापा ने महागिरजाघर में पौत्रतम संस्कार की आराधना की। और संत मरीनो के पौत्र अवशेष का सम्मान किया। तत्पश्चात धर्माध्यक्ष डोमेनिको ने संत पापा को संबोधित करते हुए कहा,
5: Beatissimo padre, con immensa gioia.
4: संत पिता, अत्यंत खुशी एवं बेटे जैसे स्नेह के साथ संत मरीनो मोंतेफेल्त्रो की कलीसिया इस महागिरजाघर में आपका स्वागत करती है, जो गणराज्य के संस्थापक और हमारे धर्म प्रांत के संरक्षक संत मरीनो के पौत्र अवशेष की पौत्र जगह है। आपकी उपस्थिति कृपा का एक उपहार है, जो हमें हिम्मत देता है और हमारे विश्वास को सुदृढ़ करता है। एक अनोखी भूमि को आशीर्वाद देता, जो एक ही स्थानीय कलीसिया में दो स्वतंत्र देशों सन मरीनो और इटली को समेटे हुए है। उन्होंने बतलाया कि इसके बावजूद वे भाईचारे, शांति और विविधता के बीच एकता के साथ जीते हैं। उन्होंने बतलाया कि उनका इतिहास आज़ादी के सिद्धांत पर आधारित है, जो विश्वास एवं सामुदायिक भावना में पूर्ण होती है। उस आज़ादी के द्वारा वे ईश्वर और इतिहास के सामने जिम्मेदार पुरुष एवं महिला के रूप में, जैसा कि विश्वपत्र मानिफिका उमानितास में सिखाया गया है, हर जीवन की गरिमा को गर्भधारण से लेकर उसके स्वाभाविक अंत तक सुरक्षित रखने के प्रयास में अपना सहयोग देते हैं। धर्माध्यक्ष ने संत पापा के सामने शांति के लिए, सभी युद्धों को खत्म करने के लिए अपनी जोरदार अपील दोहराई और संत पापा से आग्रह करते हुए कहा, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमें विश्वास में सुदृढ़ करें और हमारे कदमों को आशीर्वाद दें, ताकि यह भूमि शिष्यों के लिए घर एवं उम्मीद की जगह बनी रहे। धर्माध्यक्ष के स्वागत भाषण के बाद संत पापा ने महागिरजाघर में उपस्थित विश्वासी समुदाय को संबोधित कर कहा,
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
4: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ दिन। मुझे इस महागिरजा घर में आप सभी से मिलकर खुशी हो रही है जो आपके संरक्षक संत डीकन मरीनो को समर्पित है। मैं धर्मध्यक्ष का अभिवादन करता हूँ और उनके सुवचनों के लिए धन्यवाद देता हूँ। साथ ही पुरोहितों, धर्म संघियों, धर्म प्रांत के कलीसिया प्रतिनिधियों और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन करता हूँ। संत पापा ने इस पल को ख्रिस्त के पद चिन्हों पर एक साथ यात्रा में एक पड़ाव के रूप में अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया। सन मरीनो की कलीसिया के इतिहास पर नजर डालते हुए संत पापा ने कहा, सन मरीनो मोंतेफेल्ट्रो धर्म प्रांत संत मरीनो और लियोन के विश्वास एवं साहस का एक शानदार इतिहास की विरासत है, जिन्होंने 18 सदियों पहले ख्रिस्त संदेश के साथ ऐसे मूल्यों को लाया जिससे एक ऐसी संस्कृति एवं सभ्यता का जन्म हुआ जो ईश्वर की छवि मानव पर केंद्रित हो। लोग धर्मी और राजमिस्त्री, जिन्हें बाद में अलग अलग सेवाओं के लिए बुलाया गया, सुसमाचार के संदेश को एक नए समुदाय और राजनीतिक मॉडल में बदलने में कामयाब रहे। संत पापा ने गौर किया कि यह मॉडल आज भी जीवित है। उन्होंने कहा, यह देखने में बहुत अच्छा लगता है कि धर्म प्रांत और नागरिक समुदाय अपने संस्थापकों के कामों को उसी जोश और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। संत पापा ने कलीसिया के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को संबोधित कर कहा, मैं सबसे पहले युवाओं की ओर मुड़ता हूँ। उनसे पोप बेनेडिक्ट 16वें की बात दोहराते हुए कहा, आधे अधूरे तुरंत जवाबों पर ना रुकें, जो ज्यादा आसान और अधिक आरामदायक लगता है, जो आपको खुशी, उत्साह, उमंग के कुछ पल दे सकता है लेकिन आपको जीने का असली आनंद नहीं दे सकता। और आगे कहा, आपका हृदय आनंद के लिए खुली एक खिड़की है, इस खिड़की को खुली रखें। अपनी आत्मा की दृष्टि से उन रास्तों का अनुसरण करें जो सुंदरता, अच्छाई और जीवन की उन महान इच्छाओं द्वारा आपके भीतर खोजे गए हैं जिन्हें आप अपने दिल में रखते हैं। यदि आप ध्यान से उनके रास्तों को देखें और उनकी आवाज सुने तो वे आपको ऊपर की ओर ले जाएंगे ईश्वर से मुलाकात के लिए, जहाँ ईश्वर आपको खोजते और आपकी प्रतीक्षा करते हैं और उनकी मदद से आपके सपनों में इतिहास को प्रभावित करने और उससे बेहतर बनाने की ताकत आएगी। संत पापा ने युवाओं को एक दूसरा सुझाव दिया। उन्होंने कहा, दुनिया में अपने मिशन को पूरे जोश के साथ अपनाएं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले अपने बुलावे को समझने की कोशिश करें जो आप में से हर एक के लिए खास है और उसकी महानता की तारीफ करें और फिर ईश्वर से आपको जो भी वरदान मिले हैं बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ उसमें लगा दें। विवाह संस्कार, पुरोहिता या समर्पित जीवन अपनाने, सामाजिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता जैसे मुश्किल फैसले लेने से ना डरें। जो जिम्मेदारियां आपका इंतजार कर रही हैं उनके लिए खुद को जितना हो सके उतना अच्छे से तैयार करें। उदारता और न्याय की पहल एवं परियोजनाओं में शामिल हों। इस तरह आप भी दुनिया से बात करने वाली शांति की गवाही देने में योगदान देंगे जो इस यात्रा के लिए पोप का आदर्श वाक्य है। संत पापा ने उन पुरोहितों, धर्म गुरुओं एवं शिक्षकों को भी धन्यवाद दिया जो अलग अलग कार्यक्रमों एवं कोशिशों के जरिए बच्चों के मानवीय एवं ख्रिस्त विकास के लिए काम करते हैं। पोप ने कहा, प्यारे मित्रों, आपका काम एक छिपा हुआ लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम है, एक विनम्र एवं मूल्यवान सेवा है, क्योंकि इससे माता पिता को मदद मिलती है जो अपने बच्चों की धर्म शिक्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। वास्तव में परिवार विश्वास के प्रशिक्षण के लिए पहला स्थान है। वह कुदरती कोख है जहां बचपन से सुसमाचार को सीखा और हर दिन सांस लिया जाता है। इसलिए एक विवेकशील प्रचारक अपनी देखभाल के द्वारा यह सुनिश्चित करेगा कि परिवारों और कलीसियाई समुदायों के बीच एक मजबूत शैक्षणिक तालमेल बने, एक शैक्षणिक समझौता हो ताकि माता पिता शामिल महसूस कर सकें, अपने धर्म को एक नए तरीके से पुनः खोज कर सकें और अपने बच्चों को विरासत में मिले ख्रिस्ते मूल्यों को देने की खुशी पा सकें। माता पिता और शिक्षकों को सलाह देते हुए पोप ने कहा कि वे विकास के रास्ते पर खासकर ख्रिस्त दीक्षा में सबसे पहले बपतिस्मा और संस्कारी जीवन की सुंदरता एवं आनंद को बताएं ताकि समुदायों में पवित्रता के रास्ते बन सकें और मजबूत हो सकें और सभी लोगों में अपनी नबी, पुरोहित और राजा होने की गरिमा के बारे में जागरूकता बढ़ सके। संत पापा ने कहा, हमारा विश्वास है कि सुसमाचार हर समय के पुरुषों और महिलाओं के लिए स्वतंत्रता का रास्ता है और यीशु ख्रिस्त एवं उनके वचन में मानवता की खुशियों, जख्मों और गहरे सवालों को अर्थ एवं पक्के जवाब मिलते हैं। इसलिए हमें यकीन है कि प्रभु हमारे रास्ते पर जो भाई बहन लाते हैं उन्हें हम जो सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं वह है प्रभु से मिलने में उनकी मदद करना, जिन्होंने शरीर धारण किया, जो हमारे लिए मरे और फिर जी उठे और जिनमें हमारी मुक्ति निहित है। इस नज़रिए से हम हर तरह के उदार कार्य करते हैं बिना किसी हिचकिचाहट और गहरी चिंता के साथ, बल्कि हमेशा उन लोगों की बड़ी और पूरी भलाई को ध्यान में रखते हुए जिनका हम साथ देते हैं। संत पापा ने कहा, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कई युद्धों से घायल है, जहां हम बढ़ती हिंसा, अकेलापन और दूसरों के डर से परेशान हैं। इन परेशान करने वाले बहाव का सामना करते हुए हमारा जवाब सिर्फ सुसमाचार के रास्ते पर और भी अधिक पक्के विश्वास के साथ चलना हो सकता है। इसकी प्रेरणा एक ऐसे समाज की नींव है जो अपनी और दूसरों की आज़ादी के सम्मान पर एवं सबसे बढ़कर ईश्वर की पौत्र इच्छा के सम्मान पर बना हो, जो सबसे कमजोर लोगों के लिए चिंता, माफी, मेलजोल और एकजुटता दिखाता एवं आज्ञा देता है। संत पापा ने तीसरी सलाह के रूप में एकता बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, आइए हम अपने समुदायों में एकता की गवाही दें, पल्लियों के बीच और उनके अंदर, पुरोहितों एवं विश्वासियों के बीच एवं अलग अलग करिश्मों और प्रेरिताएं के बीच। यह भी उस जीवित सुसमाचार की विरासत का हिस्सा है जो संत मरीनो और लियोन ने हमें दी है। उनकी दुआओं से प्रभु आपको आशीर्वाद दें और आपकी यात्रा में हमेशा आपका साथ दें। संत पापा ने अंत में कहा, आपके स्वागत के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको अपनी प्रार्थनाओं में अपने साथ रखता हूँ और मुझे यकीन है कि आप भी पोप के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। धन्यवाद। अपना संदेश समाप्त कर संत पापा ने महागीर जगर के अंदर और बाहर उपस्थित सभी विश्वासियों का अभिवादन किया और उनका हौसला बढ़ाते हुए उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इसके बाद संत पापा सन मरीनो से विदा हुए। उन्होंने मेनाबिले में अगुस्तिनियानी धर्म बहनों के पादवा के संत अंतोनी मठ का दौरा किया।

सन मरीनो में आधा दिन बिताने के बाद संत पापा लियो 14वें हेलीकॉप्टर से करीब 3:15 बजे रिमिनी फिएरा हेलीपैड पर उतरे। वहां से संत अगुस्टीन प्रदर्शनी का दौरा किया। फिर वे पापा मोबाइल से लियोन हार्मेल प्रदर्शनी केंद्र गए। रास्ते में संत पापा के दर्शन हेतु एकत्रित छोटे बड़े सभी लोगों का अभिवादन करते हुए संत पापा आगे बढ़े। वहां से संत पापा बच्चों के गांव में मीटिंग में हिस्सा लेने वालों का अभिवादन किया। इसके बाद संत पापा पापा मोबाइल से ही ग्रैंड ऑडिटोरियम में कम्युनियन एंड लिबरेशन शीर्षक से प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। मीटिंग में करीब 3,000 स्वयंसेवक अपना योगदान दे रहे हैं। संत पापा ने मीटिंग के प्रतिभागियों को अपना संदेश दिया। इसके बाद संत पापा रिमिनी महागिरजा घर गए और महागिरजा घर में कारितास की मदद से बीमार, दिव्यांग और गरीबों से मुलाकात की। उन्हें अपना प्यार भरा संदेश दिया, उनके साथ समय बिताया। फिर शाम को पियाजाले देल पोर्तो में रिमिनी धर्म प्रांत के विश्वासियों के साथ पवित्र मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे। पवित्र मिसा के बाद पियाजाले देल पोर्तो में स्थानीय अधिकारियों के विदाई समारोह के बाद संत पापा हेलीकॉप्टर से वाटिकन के लिए रवाना होंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।